निवास, खालसे मैं हूं करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूं सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अरपाता, खालसा मेरो सुख एलादा, खालसा मेरो मित्र सखाई, खालसा मेरो मित्र सखाई, खालसा मात पिता सुखदाई, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो मित्र सखाई, खालसा मात पिता सुखदाई, खालसा मेरी शोभा शीला, खालसा बंद सखा सद डीला, खालसा मेरी जात अरपत, खालसा मेरी जात अरपत, खालसा सो माँ को उत्पत्त।

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध, तदप न उपमा वर्णत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध, तदप न उपमा वर्णत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाखी। मैं झूठ नहीं कह रहा एक जरा पर भी, एक छिन पर भी, इदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौं खा के कहना। या मैं रंच न मिथ्या पाखी।

देती है। अच्छा तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगा, रानी कल मैं भी तेरे नाल चलना का आखो श्री हो। रानी बड़ी खुश, मैं तो रोज अरदास कर दी सर ऐ मेरे वाहिगुरु जे मैनू प्यार बख्शे मेरे पति नू ही बख्शे। जिथे दंपति दा प्यार बन जाए एक निशाना बन जाए कर वैकुंठ बन जाए, नहीं तो कई घरां च तके है जनानी दा मुंह किधर है मर्द दा मुंह किधर है, वो कुछ बोलदा वो कुछ बोलदा, कई घरां चकले वेल ने खड़कदे ही रहिंदे नार। पर जे गुरु दी बख्शिश होवे प्यारी सास संगत दंपति दी बन आई है सुर उथे सारे पदार्थ। कई घर इस्त्री का अपमान होंदे है, याद रखो जिस घर विच इस्त्री का सत्कार नहीं उथे शांति नहीं रह सकती, जिस घर विच पति का सत्कार नहीं उथे, क्योंकि ताड़ी दोहां हथां नाल वजदी है। ए नहीं भी पति रो पाई जाए इस्त्री ते ते इस्त्री विचारी चुप कर रहे, क्यों चुप करे, ए तां बराबर दा हक है। ए थोड़ा भी इस्त्री गलती करदी है पति नहीं करदा, पति भी करदा। बाणी ने कहा भुलण अंदर सब को भुल दो, गलतियां दोवां पासियां तो हो जांदियां हन, पर उन्हां दी सियाणप यह है कि अपनी गलती नूं विचार नाल निजिठ के अपने जीवन दा रस्ता क्लीयर रखना चाहिए, कोई मैल नहीं होनी चाहिए। रस्ता सुंदर होएगा दोवे सुख माणनगे आनंद माणनगे। अज राणी बड़ी खुश है, मालिक मेरी पुकार तुसी सुन ली। दूजा दिन होया, अगे ता राणी चोरी जांदी सी, हुण राजा भी तैयार है, दोवे जा रहे हैं, राम जोड़ी दोवे बह जांदे हैं। सत्संग विच पहुंचे, सत्संग विच बैठ के जिसे लिए आनंद आया भोग पिया बाहर निकले, राणी ने कहा राजन सुनाओ कोई आनंद आया, तो राजा मस्ती विच झूम के की कहिंदा है, साध संगत

Sauda Bhaskar ke कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंत साहब का पाठ

प्यास कितनी प्यार वाली की प्यासी गुरु ने दर्शना दी नाथ पी मिली आप भी मैं दिन कृपा की पता ये अज ना दिया लोगों पूरी हो जाए अगर कोई बक्ति कोई वही गल तो प्यार ना पहले सेव।

से प्यार दीजिए साल कितनी सुंदर है मेरे दाता जी दिल करे चातक की जाए कृपा न उतरे हाथ न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हमको लीजिए गुरु कुमारी गुरु दर्शन मैं गंगा जी कहते हैं प्यार वाले तेरे सिख हाँ गंगा जी आओ चल के छेती दर्शन अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हम आराम कर रही सब ने पहुंचे जथेदार बेनती की जथेदार जी धन गुरु नानक दिया संगत वास्ते कड़ा प्रशादी देंगे जथेदार जी उठ के बैठ गए सारी संगत को सावधान किया प्यारी सार संगत उठो कोई गुरसिख आया है गुरु ने उन्हें मन में प्रेरिया है लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया कड़ा प्रसाद ही दे जा रही है उठो पहले अरदास करो जो भी गुरु अरदास मिलती है ना पहला अरदास करो ये अरदास करे तो वो गुरु की बख्शिश बन जाती क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है कार्य प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए क्योंकि अरदास क्यों हुई कोई कार्य है गुरुओं की कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरुओं की अच्छा तेरी चंगा कर मिले जय प्रसाद बसा सुख मंदिर किसे पे आए तो सारी सावधान जथेदार ने गल च पला पा के अरदास की ऐ धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसाद ही देख लेके आया है सिख नू नाम दान बख्शी सिख नू सिखी दान बख्शी अजू कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी अज सी प्रेमी सिख बन गए गंगा का सेवा का फल अरदास करो जी साहबा ने अपने हथ सारी संगत को कड़ा प्रसाद एक गंगा जी हम जल भी चला साहबा के सोहने हथा जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें ही जपया श्री वाह जल चुकाया जूठे भांडे कौन मांग रहा है माता गंगा जी वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा जो गुरु घर की सेवा तू मांझे हैं भाई साहब जी की सिर्फ फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहबल कर दी सारे जल सकिया भुख भी दूर से प्यास भी दूर हूं संगत आराम कर रही है धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का ये सारी संगत गुरु पक्का करे पक्का कर दिया प्यार क्या

ज्ञान चाहिए चाहिए, मुझसे खा नहीं तुम्हें सदगुरु आप समझन जिर के चौदह रसड़े प्यारे कल तिना के पास सूर तिना की से मिले जी कहो नानक की। बाबा पिताजी पहुंच गए जाके साहबा के उसको जोड़ा ले लिया, रो के क्या नीचा रूज करने वाले आ पत्ता नु पावन करने वाले आ तू ही नहीं कॉपी अगले बाबे यार एडे सोने सुख तू भी छोड़ दे साक्षा इतने बैठे हो जोड़े पहचान लो। हजूर कह लगे बाबा तो इन्होंने नेत्रा तन गुरु

跳ねていこうみたいな。それで次にサンダピアリビリ。इंसानियत प्यार करके हैवाना ना प्यार करना आप धन को जो प्यार दीजिए।

María, con ca satgur prasad ar paryo ar ded vicharyo yavar payangam sadhe pant janasyo sangna chutyo adhik ahang budbade आर्यो अर्देद विचार्यो निवल खुयंगम साधे पंच जुनाशों संगना चुटक्यो अधिक आहंग बुद्बादे।

सुजला संचौरासी ए भी कर कर रहा बड़ी आड़ जा फिर फिर जल में अर्शो संग न देहा राजलीला राजन की रचना करया हुकम अपारा सृज सौणी चंदन शोभा नाग खोर का द्वारा हर तीर

भावे मेरी जात होची है मेरी पत होची है पर मैं इकला जरूर खटिया जेड़ा आम आदमी नू नहीं मिलता। असी लोग आम जग्यासु जीव सारी उम्र छोटे छोटे लाभां नू वेखदे रहने भाई बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज दी समझ आंदी है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं है। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे वो सारी उम्र नसा फिरदा है दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन होछी मत मेरी जात जुलाहा हर का नाम लियो मैला।

जिस जीव आत्मा दे जीवन विच प्रभात आ गई उसने राह पा लिया, द्वेष खत्म हो गई, आत्मा परमात्मा दी एकमिकता हो गई, उसके गल विच जित दी माला पवेगी। गुरु तेग बहादुर जी दे उचारण कीते राग जैजावंती दे चार शब्द अखीर विच आए हन। जैजावंती नूं किसे भी संगीत ग्रंथ राग किसे राग दी बंस विच ना लिखना दर्शाउंदा है कि नवेकला राग है। अते गुरु महाराज जी ने जैजावंती नूं अखीर विच रख के नवेकली गल ही कीती है। गुरु साहबान ने राग नूं नवी नुहार, नवा मोड़ ते नवा गायन रूप दे के नवा वड्डा पसारा पा के आत्मिक ठंड प्राप्त करन दा हथियार बनाया। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दो गंधार, दो निषाद अते बाकी सारे शुद्ध सुर लगते हैं। जैजावंती विच कोमल गंधार दी वरतों एक विशेष ढंग नाल उसके दोवें पासे ऋषभ सुर रख के कीती जांदी है। इसका वादी सुर ऋषभ अते समाधी पंचम है ते गौण दा समा रात दा दूजा पहर मन्या है। सरवण करो, रे मन कौन गत हुए है तेरी, भाई कमरपाल सिंह जी पासों। दूजे शब्द गायन कर रहे हैं डॉक्टर दर्शन सिंह जी नरूला। शब्द दे बोल हैं राम सिमर राम सिमर, यह है तेरा काज है। पहला शब्द रे मन कौन गत हुए है तेरी।

अगर कोई सोच आ जाता, अगर कोई सोचन आता मतलब पाप भर के किस तरह भेजना, किस तरह खत्म करना, वाहेगुरु के नाम हर बारी जो एक सोच आ जाता वाहेगुरु के नाम भेजो रब तो नहीं रहेगा। खैर वाहेगुरु का मतलब कारण यही है असि ता ही वरतते हैं कि असि खालसा बन जाए, खालस के रहे, गुरु के वल जाए।

पौड़ी नानकंत ने अपनी हरता के पारावार आप कराए साकी मेरा आप कराए मार इक नगलिंग नीरिया एक तुरी चढ़े विश्या।